अंधार हो गया। इस अंधार को मेटने के लिए गुरु नानक अवतार हो गया। जिसने किया सिद्ध

पेट भर के रज के खाइया अखां दियां खखड़ियां वेख के निहाल होईयां। गुरु नानक दी नजर हो गई अख दी खखड़ी ते। अंब ते अनार मर्दाना तोड़ तोड़ खाऊंगा। ऐसे अमृत फलां दा स्वाद लै रहा है।

जंतु कोई नहीं इसने छड़िया, सारे खा गया। हुण आदमियां नूं खाना शुरू कीता, जेड़ा स्थिति भुलिया पटकिया इधरों लंघ जांदा है। वड्डा कड़ाया तेल दा भर के रखिया होया, ओदे विच तल के